0: क्या कर रही है?
1: घर भी आ गया
0: दौलत।
2: कौन?
1: पता नहीं, दारू पी के गाड़ी चला रहा था। मरती मरती बची हूँ मैं।
2: फालतू है साला, मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको। चल छोड़, मैनेजर देख रहा है।

0: रेडियो साइनम 89.8 मेगाहर्ट्ज
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल.

0: हेलो हेलो 1 2 3 चेक।
1: तपाईं अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज।
2: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम टिप्स ऑफिशियल।